0: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान।
1: देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
0: डेजर्ट सफारी,
1: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
0: साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
1: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। That's 8574-8410. Safo Travel. Auto Protected.

0: तारिक हलाल ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए ऑन tarikhalal.com और घर बैठे ताजा मीठा हासिल कीजिए।
1: This is Laika Radio.

0: तेरी।
1: सुनो लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते, लाइका रेडियो .com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी। पंजाबी।
2: Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Greater Manchester, plus our other offerings, Leica Radio Greater London and Leica Gold Greater London. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0161 250

0: Breakfast with Deep Raja.
1: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
2: We're finally going home for the wedding.
3: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
2: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
3: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
2: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
3: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
2: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
0: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
6: यू मीन सॉफ्टहॉल ट्रेवल?
5: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
6: एक बार आजमाइए जरूर सॉफ्टहॉल ट्रेवल.
5: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
6: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
7: कॉल सॉफ्टहॉल ट्रेवल 24 hours a day, 7 days a week on 0161-250-1250. That's 0161-250-1250.
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा

0: जी हाँ बिल्कुल, धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। खेत तो नहीं लेकिन हमारे यहाँ की घास बिल्कुल सूख गई थी और इसीलिए देखिए नील गगन पे उड़ते बादल ने हमारी बात मान ली है और आज तो बादल झमाझम बरसने वाले हैं। अभी फिलहाल भी बरस रहे हैं लेकिन दोपहर में और भी तेज बरस सकते हैं। तो आप अगर कहीं प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का तो सोच समझ कर कीजिएगा, वरना कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आराम से हमारा साथ दीजिए घर में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ, क्योंकि अब मौसम में थोड़ी ठंडक आ गई और ऐसे मौसम में चाय आहा, और उसके साथ समोसे पकोड़े हो तो मजा चार गुना है ना। तो चलिए इंजॉय कीजिए आज के दिन को। प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है, आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद लाइका रेडियो नेटवर्क जो है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स, और जहां कहीं भी ऋतु शर्मा की आवाज पहुंच रही है, जहां कहीं भी हमारे सुनने वाले हैं आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। और मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे हैं, मजे में हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, चुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और अपने जीवन का भरपूर मजा ले रहे हैं। और ऐसा ही जीवन आगे भी चलता रहे, ऐसी ही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और चलिए इसी के साथ बढ़ जाते हैं आगे, और आपको बता दें कि आज के प्रोग्राम में भी सैटरडे जो कुछ होता है वो सब कुछ होगा, बस आपको भी हमेशा की तरह मेरा साथ देना होगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो वन पाउंड आज आपको देगा 128.75 भारतीय रुपए, लेकिन ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा हमेशा की तरह SBI ब्रांच में जाकर ऑनलाइन या फिर उनके SBI योनो ऐप के थ्रू। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Radio.
3: Laika Radio.
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: की नजर
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक
2: Plus, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055, we could be short by 5 billion litres a day.
3: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
4: We're not having that, are we?
5: No. Oi, hear that? It's watering cans.
6: And fix those drips and drops.
7: And take shorter showers, yeah?
6: Because when we work together, it all adds up.
8: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
9: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410 साफो ट्रेवल Auto protected.
10: The wait is finally over.
11: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
10: Mirzapur is coming to the big screen.
12: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat.
10: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
13: Agar Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
10: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Just 6 days to go. Mirzapur the movie, releasing in cinemas September 4th.
14: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. दूसरा कोई नहीं खोलेगा
15: Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danew Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports. There's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danew Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
16: सुबह का नाश्ता हो दोपहर का लंच या शाम का डिनर सब कुछ एक ही जगह बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी पाए निहारी मगज पराठे और बिरयानी साथ ही लजीज डिजर्ट्स फालूदा शेक्स कड़क चाय कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई दी 11th आज ही तशरीफ लाइए 881 स्टॉकपोर्ट रोड मैनचेस्टर M19 3PG तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट हर वक्त हर जायके के लिए
17: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
18: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जैमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
17: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जैमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
19: इट वाज जस्ट अनदर डे अ फैमिलियर ड्राइव थ्रू फैमिलियर कंट्री बट देन जस्ट अराउंड द कॉर्नर came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
20: Get in touch. Advertise on Leica Radio Greater Manchester, the largest Asian commercial radio station in the northwest of England. Call now 0161 250 8222 or sales at leicaradio.com.
21: She's back.
22: साथ देने का दिलाया था भरोसा तूने और फिर छोड़ दिया मुझको अकेला तूने इन तमाम सवालात के जवाब के साथ अनीसा नासिर विल बी वेरी मच हासिर
20: कैच अनीसा नासिर एज शी रिटर्न्स ऑन द बिग शो फ्रॉम बैंक हॉलिडे मंडे एट 7 PM ऑन लाइका गोल्ड एंड लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर
23: This is Leica Radio,
20: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
23: This is Leica Radio,
20: Greater Manchester.
23: Leica Radio.

0: बिल्कुल, प्रिंस फिल्म से लिया था ये गाना लता जी की आवाज, जिसमें थे शम्मी कपूर और साथ में थी वैजयंती माला, और ये दोनों ही हमारे विजय गुडूरी जी के फेवरेट एक्टर्स हैं। तो चलिए, ये गाना हमने आपके नाम किया और साथ ही साथ हमारी रोशनी जी कहती हैं कि व्हाट अ लवली सॉन्ग, तो चलिए ये गीत आपके नाम पर भी गया।
1: फील गुड ट्रैक वाज ब्रॉट टू यू बाय LaikaRadio.com. वी आर लाइव अक्रॉस ग्रेटर मैनचेस्टर एंड ऑनलाइन वाया द Laika Radio ऐप एंड वेबसाइट ऑन LaikaRadio.com. लिसन लाइव और लिसन बैक.
2: दिस इज Laika Radio.
0: जी हाँ, बिल्कुल, आप अपने पसंद का रेडियो सुन रहे हैं जहां से बजते हैं सिर्फ क्लासिक्स, और इस शो में ऋतु शर्मा एक बार फिर से आपका साथ देने के लिए हाजिर है पूरे एक बजे तक, और आपके ढेर सारे मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं, तो चलिए एक नजर डाली जाए उन पर.
1: Laika Radio.
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं विजय जी आपके विचार के साथ. कहते हैं रिश्ता और भरोसा दोनों ही दोस्त हैं. रिश्ता रखो या ना रखो, किंतु भरोसा जरूर रखना, क्योंकि जहां भरोसा होता है वहां रिश्ते अपने आप बन जाते हैं. और ये बात बिल्कुल सही आपने कही है. स्वागत है आपका इस शो में, और आपके अलावा जितने साथी साथ दे रहे हैं सभी को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम. हमारे साथ योगेंद्र जैन जुड़े हैं, संध्या भावसर हैं, रोशनी जी हैं, हैना है, रेखा इन कीर्ति मानक कहते हैं कि राखी का गाना बजा दो भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना. और ये कल कसम बहुत सारे भाइयों ने खाई होगी, और नहीं खाई होगी तो बहनों ने कहा होगा कि कहो भाई, राखी का त्योहार ही होता है भाई बहन के प्यार का. आई एम श्योर कल आपने हमारे ऐसे खूब सारे गीत भी सुने होंगे, और आपने मजे के साथ रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया होगा. इसके अलावा तोची जी हमारे साथ है, और आंटी जी कहती है मेरा तो दिन बना दिया आपने गाना बजाकर, थोड़ी सी जो पीली है. मैं जानती हूँ, क्योंकि इसमें अमिताभ बच्चन जो थे. चलिए ये गाना आपके नाम पर गया. महेंद्र पटेल जी क्रॉइडन से है, मालती जी हमारी पिंचली में सुन रही है, हमारे साथ है हमारे हरीश खत्री जी, थैंक यू, भारत में सुन रहे हैं. गिरीश जी बहुत धन्यवाद, और राजेश जी आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि मौसम अच्छा हो गया है, बारिश आ गई है, थोड़ी थोड़ी हरियाली दिखनी शुरू हो गई है, और ये जरूरी है कि हम अपनी पृथ्वी का ध्यान रखें मानवता के लिए. ये बात आपने बहुत अच्छी कही है, क्योंकि अगर हमने अपनी धरती माँ का ध्यान नहीं रखा तो जो नेपाल में घटना हुई है ये बार बार और कई बार हो सकती है. धरती का तापमान बढ़ रहा है और ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बर्फ पिघल रही है, और अगर ये ग्लेशियर्स खत्म हो गए तो समझ लीजिए हो सकता है पीने का पानी खत्म हो जाए, आने वाली जनरेशन को इतनी खूबसूरत धरती देखने को ही ना मिले जो हम सबने देखी है. तो समय रहते अगर संभल जाए तो अच्छा है, वरना आगे न जाने क्या होगा. क्योंकि जब प्रकृति का कहर होता है ना, तो उसके सामने हम इंसान और इंसान की बनाई हुई चीजें बौनी नजर आती हैं. उन चीजों को कोई भी रोक नहीं सकता, ये हमने नेपाल में जो प्रलय हुआ है उसमें देखा है. कितने लोगों ने, कितने बेगुनाह लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं. अब तक 626 पीपल अपनी जान गंवा चुके हैं, 2400 से ज्यादा लोग लापता हैं, 320 भारतीय भी वहां फंसे हुए हैं, और अभी भी वहां पर खतरा टला नहीं है, मंडरा रहा है. और हम सबकी यही प्रार्थना है कि ये खतरा टल जाए और अब वहां पे ऐसी कोई और तबाही ना हो. जब भी इस बारे में कुछ सुनती हूँ दिल दहल जाता है. समय रहते सभी को संभलने की जरूरत है. इतना तो विकास कर लिया, मुझे लगता है अब और क्या चाहिए. सब कुछ तो है इंसानों के पास, कितनी तो तरक्की कर ली, और कितना आगे बढ़ना है. अब समय है थोड़ा पीछे लौटने का. एनीवेज, इस बारे में तो बहुत लंबी बातें हो सकती हैं, लेकिन थैंक यू राजेश जी, आपने हमें ये सब बातें करने पे मजबूर किया. आपका मैसेज पढ़कर मुझे ये सब याद आया. थैंक यू महेंद्र बाजारिया जी, आप शो देखने जा रहे हैं मजे के साथ देखिए. थैंक यू प्रज्ञा, मृदु जी, वंदना जी भारत से लौट कर आई है, कहती मैंने आपको बहुत मिस किया. मैंने भी किया वंदना, आ गई हो ना, चलो थैंक यू, स्वागत है. भरत जी स्वागत है आपका. शेखर जी, प्रीति जी, मीना लखानी, अनिल सोनी वियाना में सुन रहे हैं, और जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं. चलिए ये अगला गाना मेरी ओर से आप सबके नाम पर.
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.
0: थोड़ा धूम मचाने का समय आ गया है, और इस गाने को बजाने के लिए भी एक खास वजह है. वो क्या है बताऊंगी ना, ये गाना सुन लो पहले.

0: आप भी समझ गए होंगे कि इस गाने को मैंने आज क्यों बजाया है। इसमें दो ऐसे सिंगर हैं जिनकी बहुत ही दमदार आवाज है, सुखविंदर सिंह और ऋचा शर्मा। और आज ऋचा शर्मा अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। आज उनकी बर्थडे है और बहुत ही खूबसूरत गाने उन्होंने गाए हैं। आज ही के दिन यानी कि 29 अगस्त 1974 में बॉर्न ऋचा शर्मा आज 52 इयर्स की हो गई हैं और अच्छा खासा नाम कमाया है। कुछ ऐसे गाने जो उन्होंने गाए हैं लगता है कि उनके अलावा कोई और गा ही नहीं सकता। आपको बता दें कि फरीदाबाद हरियाणा में पैदा हुई थी एक मंदिर के पुजारी पंडित दया शंकर उपाध्याय की सबसे छोटी बेटी, जिन्होंने माता के जागरण से शुरुआत की और जिस पर माता रानी का आशीर्वाद हो वो जरूर ऊंचाइयां छूता है, और ऐसा ही उनके साथ हुआ। उनके बारे में कहा जाता है कि घर में ही बचपन से भक्तिमय माहौल था और बहुत छोटी सी उम्र में अपनी माता पिता के साथ भजन गाती थी और 8 साल की उम्र में ही उन्होंने दिल्ली और आसपास के इलाकों में माता के जागरण और धार्मिक कार्यक्रमों में खूब पार्टिसिपेट किया और बाद में तो संगीत सीखा। और आज देखिए क्या खूबसूरत गजल, पंजाबी गाने, राजस्थानी लोकगीत, कुछ भी सुन लीजिए। उनके कुछ गाने हैं जो मुझे इतने ज्यादा पसंद हैं लेकिन वो हमारी रेंज में नहीं आते इसलिए मैं उन्हें आपको सुनवा नहीं सकती, लेकिन बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अच्छी गायिका है इनकी आवाज और इनके गाने मुझे बहुत पसंद है। आज इनका जन्मदिन है तो इसीलिए इनकी आवाज भी हमने प्रोग्राम में शामिल की।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
0: और इनके साथ साथ मैसेज आया है अशोक बाली जी का, जो कहते हैं कि आज मेरे भाई राजेश बाली का भी बर्थडे है। ही इज वर्किंग विद ऑल इंडिया रेडियो और आप उन्हें विश करना चाहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ अशोक बाली एंड ऋतु बाली। तो बिल्कुल राजेश बाली जी, पूरे परिवार की ओर से आपको जन्मदिन की ढेरों ढेरों बधाइयां। और इसके अलावा एक और मैसेज भेजा है योगेंद्र जैन जी ने, कहते हैं हमारे विक्रम जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका आज 50वां जन्मदिन है और आपके माध्यम से हम उन्हें बधाइयां देना चाहते हैं। और आपने लिखा है कि पहले मैं बहुत परेशान रहता था वाली लतीफों की श्रृंखला के जनक आधुनिक श्रवण कुमार, शतरंज प्रेमी, किस्सा गोई के शहंशाह, मित्रों की सहायता के लिए तत्पर किस्सा गोई महापंचायत के मुखिया परम मित्र श्री श्री विक्रम खेतरपाल जी, जो महाराजा जो हालिया जापान से लौटे हैं उनके अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या मैसेज लिखा है, वाह वाह। कहते हैं आप ऐसे ही स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे और शुभकामनाएं भिजवाई हैं ऋतु ने, शिखा ने, श्वेता, योगेंद्र, कुलदीप, नेहा, एक और श्वेता, पीयूष, अजय, शोभित, निशा, एक और श्वेता और एक दर्जन राहुल और आपकी श्रीमती प्रिया जी, इन सभी की ओर से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और आज की चाय मध्य प्रदेश परिवार की ओर से। क्या बात है, क्या मैसेज है। तो बिल्कुल आप सभी को भी, आप सभी की ओर से विक्रम जी जन्मदिन की आपको ढेरों ढेरों बधाई।
2: ये है
1: Like a Radio, Ritu Sharma live on Like a Radio Greater Manchester. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: तो आपको याद दिला दे कि Southall Travel आप कॉल कीजिए, अच्छी खासी दुबई की डील्स चल रही हैं, घूम कर आइए, उन्हें फोन मिलाइए 0208-574-8410 पर एंड Southall Travel is it all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for Manchester at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
3: This is Ritu Sharma.
4: Like a radio.
1: One performer.
5: TV के सामने पोषण से कहने क्या पहनी है तुमने साड़ी भैया, खिलाड़ियों के खिलाड़ी।
6: Countless personalities.
7: जिंदगी बर्बाद हो गई है।
1: A whole universe of entertainment.
8: लंदन में फंक्शन रखा हुआ है।
9: Sunil Grover live UK tour 2026.
1: 29th October Ovo Arena Wembley London. 31st October Mattioli Arena Leicester.
9: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises, experience Sunil Grover live on stage in the UK.
1: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
9: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
2: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
3: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
10: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
3: Southall Travel.
10: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
3: Southall Travel can take you there.
11: Southall Travel, at all protected.
12: Celebrate 30 years of East is East as Ayub Khan Din's iconic story returns to its northern roots at the Octagon Theatre in Bolton.
13: Don't miss Bhaskar Patel leading a stellar cast in this hilarious and heartfelt comedy about the Khan family. Set in Salford back in 1971, follow husband George and his wife Ella and their seven children as they navigate life between two cultures.
12: See East is East from Friday 4th September to Saturday 3rd of October. Book now at octagonbolton.co.uk.
14: We're finally going home for the wedding.
15: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
14: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
15: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
14: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
15: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
14: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
16: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
17: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
18: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
19: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
20: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
21: Have you noticed the way fans shout at football matches?
22: Oh, wake up!
21: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org. Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
23: Tum itna jo muskura rahe ho.
24: Aapka naya station Leica Radio Ghazals bahut jald aa raha hai.
25: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.

ये था खूबसूरत गाना सुमन कल्याणपुर और मुकेश जी की आवाजों में। और ऐसे ही और भी बहुत सारे गाने आप सुन पाएंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में यादें में, क्योंकि आज की यादें में हम जिन्हें याद करने जा रहे हैं वो बड़ी ही खूबसूरत हैं, चुलबुली हैं, मनचली हैं, और जिनके पति देव हम में से बहुत सारे साथियों के इंक्लूडिंग मी फेवरेट सिंगर रहे हैं, आज भी हैं, कल थे और हमेशा रहेंगे। कौन है एनी गेसेस जो आज अपनी बर्थडे मना रही हैं और जिनके बारे में होंगी बातें। और इसके साथ साथ भाविशा ने मैसेज भेजा है कि उनकी मम्मी जी नलिनी जी भी आज अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं और आप चाहती हैं कि उनके लिए गाना बजा दूं, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तो आप ही गा दीजिए ना उनके लिए ये गाना, वो बहुत खुश होंगी। हमारी ओर से नलिनी जी को और भाविशा की ओर से पूरे परिवार की ओर से आपको आज की जन्मदिन की, आपके जन्मदिन की ढेरों ढेरों ढेरों बधाइयां। और एक और मैसेज आया है जिसमें आपने लिखा है कि आपकी सिस्टर मीना जी का आज बर्थडे है, अनीता जी कहती हैं, तो मीना जी अनीता जी की ओर से

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

0: weekend on Leica.
1: हम का पताना बन गया अच्छा
2: अच्छा जी
1: एक बहाना बन गया अच्छा
2: अच्छा

0: अच्छा। किशोर कुमार और लीना चंद्रावरकर की आवाज में था ये गाना उनकी फिल्म मनचली से, जो 1973 में आई थी, और उससे पहले उनकी और राजेश खन्ना की सुपरहिट फिल्म महबूब की मेहंदी से लिया था ये गाना। और आज की यादें में हम याद कर रहे हैं लीना चंद्रावरकर को, जिनकी की आज बर्थडे है। 29 अगस्त 1950 में बोर्न लीना जी आज 76 ईयर्स की हो गई हैं। और हम सब जानते हैं कि 1970s का जो दशक था उसमें उन्होंने खूब काम किया और बहुत अच्छा काम किया, और अपनी खूबसूरत मुस्कान और एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता। कुछ बातें उनके बारे में आपको बताऊं कि आज ही के दिन कर्नाटक के धारवाड़ जिले में पैदा हुई थी लीना चंद्रावरकर, और इन्होंने 1968 में सुनील दत्त की फिल्म मन का मीत से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। और उसके बाद तो इन्होंने राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, संजीव कुमार जैसे बड़े बड़े हीरोज के साथ बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्म्स दी हैं। और इनके लाइफ से जुड़े हुए कुछ किस्से आज मैं आपको जरूर सुनवाऊंगी। लीना जी के साथ बहुत छोटी सी उम्र में एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था जिसने उनके पूरे जीवन को बदल दिया। आपको बता दें कि लीना जी का विवाह छोटी सी उम्र में ही गोवा के एक बहुत ही पॉपुलर पॉलिटिकल फैमिली थी, उनके लड़के सिद्धार्थ बंदोदकर से हुआ था। लेकिन शादी के सिर्फ 11 दिन बाद ही एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसने लीना जी के जीवन को बदल दिया। शादी के 11 दिन बाद ही उनके पति अपनी गन को साफ कर रहे थे, और साफ करते करते उनकी रिवॉल्वर से गोली चली और उन्हीं को लग गई। और इस गोली के लगने के बाद कई महीनों तक उनका इलाज चला, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए, और सिर्फ विवाह के 11 दिनों बाद ही लीना जी विधवा हो गई। जीवन पूरी तरह से बदल गया। आगे क्या हुआ जरूर बताऊंगी। एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत बजने के लिए इंतजार कर रहा है, जरा उसे बजा दें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: लेकिन उसको बजाने से पहले आपको याद दिला दें कि आज £1 आपको देगा 128.75 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions भी apply रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
0: ये है
1: Leica Radio।
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।
3: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
4: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
3: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
3: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
5: We're finally going home for the wedding.
6: I know, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
7: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
6: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
7: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
6: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
7: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
8: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
4: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह, बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी, साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें। ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th, आज ही तशरीफ लाइए, 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
9: From cuddles to intensive care, from school runs to sirens. For babies, young children and teens, illnesses like measles, meningitis and pneumonia can cause serious life-threatening complications and even be deadly. Making sure that your child is vaccinated is a safe and effective way to keep them happy and healthy. Keep them protected with the NHS vaccines offered to children. Search NHS GM Child Vax or contact your GP practice.
10: Manchester, get ready as Surrenderella is back for 2026. Rifco Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Palace Theatre Manchester, Friday the 4th and Saturday the 5th of September. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed Desi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rifcotheatre.com and be sure to book your tickets before the clock strikes midnight. Get ready as Surrenderella goes back into the Bollywoods. Radio partner, Laika Radio.
11: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
12: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
11: Jaimin Foods Mango Pulp, available now.
13: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply doesn't work for quick reply, affects your concentration, and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
14: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard! Help!
15: Okay, help's on its way.
16: Grab my hand!
17: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
18: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
8: Laika Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein, 10:35 AM par, DAB Digital Radio par, Alexa pe bolo play Laika Gold. Aur online suno, laikagold.com pe.
19: This is Laika Radio.
8: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Laika Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
19: This is Laika Radio.
8: Greater Manchester.
19: Laika Radio.

0: लता जी की आवाज में एक महल हो सपनों का, इस फिल्म से लिया था ये गाना और ये गाना बहुत ही खूबसूरत है, आप सबने पसंद किया है और आज ऐसे ही गाने सुनवा रही हूँ क्योंकि आज लीना चंद्रावरकर अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है।
1: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Leica Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
2: This is Leica Radio.
0: तो इस गाने के बाद मैं आपको एक और बहुत खूबसूरत गीत सुनवाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था कि छोटी सी उम्र में ही लीना जी के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई और इसके बाद लीना जी बिल्कुल टूट गई, डिप्रेशन में रहने लगी, परेशान रहने लगी, किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता था और ऐसे समय में उनके जीवन में एंट्री हुई किशोर कुमार की। किशोर कुमार को जब लीना जी के बारे में पता चला तो उन्होंने पहली ही मुलाकात में उनसे कहा कि अगर वो घर बसाना चाहती हैं तो मैं तैयार हूं, मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन शुरुआत में लीना जी ने मना कर दिया, बट बाद में उनके पिता से उनकी अनबन हो गई और इसके चलते गुस्से में आकर उन्होंने तुरंत किशोर कुमार को कॉल किया और उनसे कहा कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं ना, मैं तैयार हूं। और इस तरह से किशोरदास से उनकी शादी हो गई। हालांकि उनके पिता इस शादी के खिलाफ थे क्योंकि किशोरदास उम्र में लीना जी से 20 साल बड़े थे और ऑलरेडी उनकी 3 शादियां हो चुकी थी। पर किशोरदास तो किशोरदास ही हैं। पिता को मनाने के लिए किशोरदास ने बहुत मेहनत की। वो लीना जी के घर चले जाते थे और एक दिन तो ऐसा हुआ वहां बैठ गए और बैठ कर गाना गाने लगे, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। और ये गाना सुनकर लीना जी के पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और आखिरकार वो पिघल गए और दोनों की शादी को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद तो हम जानते हैं लीना जी और किशोरदा का जीवन खुशी खुशी बीता, उनका एक बेटा भी है। चलिए सुनाती हूँ एक और खूबसूरत गीत।
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: वैसे लीना चंद्रावरकर एक ऐसी हीरोइन रही है जिन्होंने जिस भी हीरो के साथ किया फिल्म हिट हुई और उनकी जोड़ी भी सुपर डुपर हिट रही। और आई एम श्योर जब किशोरदा के साथ उन्होंने ब्याह रचाया होगा तो जीवन अच्छा बीता होगा, क्योंकि किशोरदा इतने हसमुख स्वभाव के रहे हैं, इतने मजाकिया नेचर के रहे हैं कि मुझे लगता है उनके साथ कोई बोर कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन एक किस्सा सुनवाती हूँ लीना जी के बचपन का। खूबसूरत तो थी ही और कहने वाले कहते हैं कि बचपन से ही उनकी ख्वाहिश थी कि वो हीरोइन बनी। और जब छोटी सी थी तो एक बार स्कूल में एक कॉम्पिटिशन हुआ और उसमें कहा गया कि आप लिखिए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। और बड़ी ही इनोसेंटली लीना जी ने कह दिया कि मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ। इस पर टीचर बहुत नाराज हुए और इनकी पिटाई भी की गई और इनको माफी मांगने के लिए कहा गया और इनके पिता को ये बात बताई गई। जब इनके पिताजी को ये बात पता चली तो वो भी बहुत नाराज हुए और उन्होंने लीना से कहा कि टीचर से माफी मांगो, हीरोइन बनना अच्छी बात नहीं होती है। उन्होंने उस समय लीना जी को बहुत समझाया, लेकिन लीना जी समझने को तैयार ही नहीं थी। वो पूछ रही थी, मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ, इसमें क्या बुराई है? क्योंकि उस जमाने में हीरोइन बनना कुछ अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन कौन जानता था कि आगे जाकर लीना जी हीरोइन ही बनेगी और ऐसी हीरोइन बनेगी कि सबके दिलों में अपनी जगह बना लेंगी। एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुनवाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले
1: दिस इज ऋतु शर्मा।
2: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Like a gold in London, the Midlands and Manchester.
1: Like a extra podcast updates.
0: तो लीजिए, लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ चुका है और इसका टाइटल है द दिवाली स्टोरी शोकेस, जिसे होस्ट किया है राजपथन और खुश ने। और आप लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट सुन सकते हैं स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर मैनचेस्टर एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to LeicaRadio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@LeicaRadio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@LeicaMedia.co.uk. Leica Radio.
3: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
4: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
3: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
4: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs with the Royal Philharmonic Concert Orchestra. Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
3: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साफो ट्रैवल।
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड। And

0: लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो .com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी
1: Feel good tracks all weekend with Ritu Sharma on Leica Radio, Greater Manchester.

0: आशा भोसले और रफी साहब की आवाज में था ये गाना फिल्म हम जोली से, और आज हमने लीना चंद्रावरकर को याद किया, उनके बारे में कुछ बातें बताई और उनके बारे में जानकर ये ही पता चला कि उनके जीवन में सुख ज्यादा था नहीं। पहली बार शादी हुई, सिर्फ 11 दिन बाद पहला पति छोड़कर चला गया, और जब किशोर दास से शादी की तो ये साथ भी बहुत लंबा नहीं चला, सिर्फ 7 सालों तक ये साथ चला, और 7 साल के बाद किशोर दास भी दुनिया को छोड़कर चले गए और लीना चंद्रावरकर एक बार फिर से अकेली हो गई। छोटे से बच्चे के साथ उन्होंने फिल्मों में फिर काम करने की कोशिश की, लेकिन बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आखिर में उन्होंने फिल्मों से बाय कह दिया। एक और बहुत ही सुंदर सा गाना मस्ती भरा उन्हीं की फिल्म से सुनवाने वाली हूँ, और ये होगा आज की यादें का आखिरी गाना। आपको गाने बातें दोनों पसंद आई, आज की यादें पसंद आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सैटरडे को होती है यादें प्रोग्राम के सेकंड आवर में, जिसमें हम किसी सितारे के बारे में बात करते हैं, और आज की सितारा थी लीना चंद्रावरकर। सुनवाते हैं अगला गीत, लेकर चलेगा हमें न्यूज़ तक।
1: Like her radio, where Bollywood comes first.

0: मोहम्मद रफी साहब की आवाज में था ये गाना फिल्म धरती से, जिसमें शंकर जय किशन का म्यूजिक था, और उससे पहले आपने सुना ब्लैकमेल फिल्म का गाना किशोरदा की आवाज में। आप सुन रहे हैं लाइका रेडियो नेटवर्क, और इस आवर में हम आपको सुनवाते हैं कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स, और खेलते हैं अपना थ्री वर्ड्स गेम भी, जिनके थ्री वर्ड्स मैं आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको एक बात और ध्यान दिलाऊंगी कि आज 29 अगस्त है, और आज के दिन कोई और भी जन्मे थे। उनका नाम है मेजर ध्यानचंद, जो भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास के सबसे महान हॉकी खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। और जिस तरह से वो हॉकी खेलते थे, उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। आज उनका जन्म दिवस है, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, और भारत सरकार उनके जन्म दिवस को हर साल नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाती है। हम सब जानते हैं कि इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज हो गया है, उसमें जन्मे थे और बहुत ही जाने माने खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने ओलंपिक में भारत का परचम लहराया है और बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं और देश का नाम रोशन किया है। ओलंपिक में उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, और उनके बारे में बहुत सारे किस्से हैं जिन्हें मैं जरूर प्रोग्राम में शामिल करना चाहती हूँ। लेकिन किससे तो पता नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ये जरूर बताऊंगी कि उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और इसी के चलते उन्हें रेस्पेक्ट देने के लिए मेजर की उपाधि भी दी गई। और भारत का जो सर्वोच्च खेल सम्मान है, जिसे राजीव गांधी खेल रत्न कहा जाता है, जिसे अब बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो आज मेजर ध्यानचंद की भी बर्थ एनिवर्सरी है, और जितने भी हॉकी प्रेमी हैं उनके लिए मेजर ध्यानचंद एक बहुत ही खास चीज है, और उनका जन्मदिन भी। चलिए बढ़ जाते हैं आगे, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस आवर में हम थ्री वर्ड्स गेम खेलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक भी बजाऊंगी, लेकिन पहले तैयार हैं आप आज के खेल को जानने के लिए? खेल कहां से आ गया ऋतु? हाँ, हमारा खेल ही तो है थ्री वर्ड्स गेम के तीन वर्ड्स जानने के लिए। तो तीन वर्ड्स बताने से पहले थैंक यू कहती चलू जल्दी से। शेखर अरन जी, आपको पल पल दिल के पास गीत बहुत पसंद है। शुमिला मंगर, ये आपका पसंदीदा गीत है। परविंदर मथारू, थैंक यू आपके मैसेज के लिए, योर फेवरेट सॉन्ग। बॉबी जी, थैंक यू आपके मैसेजेस के लिए। गुरुदेव गांजा, थैंक यू प्रोग्राम में साथ दे रहे हैं और मैसेजेस भी भेज रहे हैं, बहुत धन्यवाद। बेल्जियम से प्रीति हमारे साथ है, थैंक यू विजय गुडूरी जी, स्लाव जी, प्रदीप सलंकी जी, और मैसेजेस बहुत सारे हैं। थैंक यू माया जी, वाटफट में प्रोग्राम सुन रही है। ये है हमारी अनीता जी, फरीदा जी, हिमांशु पटेल, जैस्मीन, दिनेश पोपट जी, थैंक यू सुरजीत जी, मिलन जी, थैंक यू प्रज्ञा। सो जितने भी साथी हैं सभी का स्वागत है। और अब बता देती हूँ कि आज के तीन वर्ड्स कौन से हैं। पहला वर्ड है जिंदगी, दूसरा है पंख, और तीसरा है आवाज। एक बड़ा ही पॉपुलर गाना है, एंड सिंगर्स के नाम बताते ही आप पहचान जाओगे। मुकेश जी और लता जी की आवाजें हैं, 1965 की फिल्म है, और कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक है। बताओ कौन सा गाना है? जिंदगी, पंख, आवाज। मुकेश जी, लता जी की आवाजें, 1965 की फिल्म, कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक, कौन सा है ये गाना? जरा भिजवाइए अपना मैसेज हमारे इस नंबर पर।
1: WhatsApp Leica Radio Greater Manchester now on 0703 40 30 20. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 pound के बदले में आपको मिल सकेंगे 128.75 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर करवाना होगा आपको via SBI branch online by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions भी apply रहेंगे।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. Leica Radio.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।
3: Looking to get back into study? Choose Global Banking School. We deliver undergraduate and postgraduate courses in accounting, business, construction, computing, project management, healthcare, tourism, and psychology with counseling. Our flexible courses are taught face-to-face at a time to suit you on weekdays and evenings. Courses are delivered across 10 campuses in London, Birmingham, Manchester, and Leeds. Contact Global Banking School on 0208092944 or visit globalbanking.ac.uk to start your learning journey today.
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways, and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly, and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways, and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
6: यू मीन सॉफ्टल ट्रेवल?
5: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
6: एक बार आजमाइए जरूर सॉफ्टल ट्रेवल.
5: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
6: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
7: कॉल सॉफ्टल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250. दैट्स 0161 250 1250.
8: Wait is finally over.
9: Ah, ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
8: Mirzapur is coming to the big screen.
10: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat.
8: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawa.
11: Abe Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
8: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Just 6 days to go. Mirzapur the movie, releasing in cinemas September 4th.
12: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. Dusra koi nahi khulega.
13: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, लागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
14: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
1: This is the Leica Radio Network. Download the Leica Radio mobile app on your mobile devices. The radio network consists of Leica Radio Greater London, Leica Radio Greater Manchester, and Leica Gold Radio. Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Greater Manchester, plus our other offerings, Leica Radio Greater London and Leica Gold Greater London? As a combined network, we can give you a competitive rate. Spread your message to a wider audience. Call 0161 250 8222. That's 0161 250 8222. Or email sales@leicamedia.co.uk.
15: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it. You just dial 999. Use the FAST test. F. Face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A. Arms. Can they raise both arms and keep them there? S. Speech. Is their speech slurred? T. Time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast. Make the call. Dial 999.
1: Did you know you can get all the biggest showbiz news stories daily by logging on to LeicaRadio.com or the Leica Radio mobile app, powered by BizAsiaLive.com.
16: This is Leica Radio.
17: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
1: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: गंगा की लहरें फिल्म से था ये गाना, जिसमें म्यूजिक था चित्रगुप्त का। और आप जानते हैं चित्रगुप्त ही है हमारे इस बार के आर्टिस्ट ऑफ द वीक। क्या खूबसूरत म्यूजिक इन्होंने दिया है। और इनके बेटे आनंद मिलिंद दोनों, जिन्होंने 90s की बहुत सारी फिल्मों में बहुत खूबसूरत म्यूजिक दिया है, वो भी कमाल की म्यूजिक डायरेक्टर है। तो चित्रगुप्त के गाने आपने पूरे हफ्ते सुने और कल और आप सुनेंगे और उसके बाद होगा कोई नया आर्टिस्ट ऑफ द वीक। थ्रीवर्स गेम चल रहा है, बहुत सारे आंसर्स मुझे मिल चुके हैं और मैं बताऊंगी कि किन्होंने आंसर्स दिए हैं और ज्यादातर सबने सही दिए, अब तक एक ने भी गलत जवाब नहीं दिया है, तो जरूर आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल शुरू करूंगी आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला। सुनवाते हैं आपको पहला गाना,
1: ये है Like a Radio. This is Like a Radio.
2: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Like a Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
1: This is Like a Radio.
2: Greater Manchester.
1: Like a Radio.

0: सही कहा मजे महेंद्र जी आपने। एक और चित्रगुप्त के म्यूजिक से सजा हुआ खूबसूरत गाना जो था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना।
1: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
2: This is Laika Radio.
0: और करसन पिंडोरिया जी कहते हैं कि ये मेरा बहुत ही फेवरेट गीत है। चलिए आपके नाम पर किया हमने, ज्योति गिरीशा आपको भी गीत पसंद आया, आपके नाम पर भी किया, एंड जितने भी साथी का फेवरेट है दिव्या जी हैरो से, सभी के नाम पर जाता है ये गाना। और आपको बता दें कि दिवाली स्टोरी जो कि स्टेज शो होने जा रहा है ओवो अरीना में वैमली ऑन संडे 27 सितंबर को, उसके टिकट्स जल्दी जल्दी बुक कराइए। टिकट्स आप बुक करा सकते हैं फ्रॉम diwalistory.com पर जाकर। और आप जानते हैं कि इसके एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं लाइका रेडियो नेटवर्क,
1: द रितु शर्मा शो विद रितु शर्मा।
0: और चलिए अब सुनाते हैं आपको आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना।
1: दिस इज रितु शर्मा।
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: ओपी नैयर के म्यूजिक पर ये शानदार गाना आपने सुना आशा जी और शमशाद बेगम की आवाजों में। और इस गाने को सुनकर हमारी सुरेखा जी कहती हैं कि रह नहीं पाई आपको ये बताने से कि आपने ये गाना बजाकर मेरा दिन बना दिया। सुरेखा जी, ये गाना हमने आप ही के नाम पर कर दिया, थैंक यू साथ देने के लिए। और अब कुछ और आंसर्स मिले हैं। मालती जी थोड़ा और सोचिए, लेकिन अब सोचने की बात नहीं, मैं बताने वाली हूँ कि किन्होंने सही सही जवाब दिया है। रानी सोहानी जी, ये गाना शोर से नहीं है, किस फिल्म से लिया है वो भी आपको पता चलेगा। तो जिन्होंने सही जवाब दिए हैं उनके नाम है महेंद्र बजारिया जी, मीना शाह, माया जी वाटफुट से, वत्सला जी, मनीषा शाह, विजय गुडोरी जी, संध्या भावसर, साक्षी, दामिनी बेन, शुमिला मंगर, उल्लास, करसन पिंडोरिया जी, अमर, दिनेश पोपट जी, तोची, रोशनी, दिव्या, कुकी, रमीला एंड हमारे नरेंद्र पटेल जी। आप सबका जवाब बिल्कुल सही है और ये गाना मैंने लिया है फिल्म पूर्णिमा से। और गाना कौन सा है बजाती हूँ ना अब से बस थोड़ी ही देर में, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको ये भी याद दिला दें कि द लेजेंड कविता कृष्णमूर्ति रॉयल और ये आपके लिए लेकर आए हैं सनातन इवेंट। और इसके एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं और घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो साउथ ट्रेवल को कांटेक्ट कीजिए। अच्छी सी डील चल रही है दुबई के लिए 0208574 भी है। Holiday breaks were brought to you by South.
1: Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
2: Celebrate 30 years of East is East as Ayub Khan Din's iconic story returns to its northern roots at the Octagon Theatre in Bolton.
3: Don't miss Bhaskar Patel leading a stellar cast in this hilarious and heartfelt comedy about the Khan family. Set in Salford back in 1971, follow husband George and his wife Ella and their seven children as they navigate life between two cultures.
2: See East is East from Friday 4th September to Saturday 3rd of October. Book now at octagonbolton.co.uk. Make your bank holiday taste like summer with Cake Box. Cool down with our new limited edition ice cream sundaes in mango, chocolate, strawberry and vanilla. And this bank holiday weekend, they're 3 for 2. Saturday to Monday only, in-store and online at cakebox.com. Your bank holiday just got a whole lot cooler. Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
4: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
5: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
4: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
1: लाइका रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन। Power your business's growth by advertising here on Leica Radio, Greater Manchester, the largest Asian commercial radio station in the northwest of England. Call 0161 250 8222. That's 0161 250 8222. Or email sales@leicaradio.com.
6: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
7: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
8: Yeah, like a

0: साजन फिल्म के इस गाने के बाद अब सुनवाने वाली हूँ आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और मुकेश जी ने। पूर्णिमा फिल्म से लिया है ये गाना और ये गाना होगा आज के शो का आखिरी गाना।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
2: Ye hai Leica Radio.
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 129 भारतीय रुपए, 375 पाकिस्तानी रुपए और 166 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
3: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: So gold rate is 108.27 pounds per gram.
3: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: Leica Radio.
3: Leica Radio.
0: जी हाँ, बिल्कुल समय आ गया है आपको बाय कहने का और अगला गाना है थ्री वर्ड्स गेम वाला, जिसे एंजॉय कीजिए। मेरे बाद लाइका गोल्ड पर अनुराग होंगे आपके साथ, लाइका गोल्ड पर, लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर आनंदी आपका साथ देंगी, लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर फजीला होंगी आपके साथ। लेकिन कल हमारी और आपकी फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सुबह से लेके अब तक मेरा साथ देने के लिए, और बस कल फिर से प्रोग्राम में जो कुछ होगा जरूर सुनवाएंगे आपको। मौसम शानदार हो गया है, ठंडा हो गया, एंजॉय कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अगला गीत आज के थ्री वर्स गेम वाला मेरी ओर से आप सभी के लिए, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।
1: ये है
2: लाइका रेडियो।

0: कैसे?
1: सेटको माइक्रोवेव फूड कंटेनर,
2: हर मौके पर काम ये आए, घर घर खुशियाँ लाए।
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सेटको माइक्रो।
3: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
4: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
5: Dubai is the place.
4: 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
6: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410। साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
9: महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, सेंटोसा आइलैंड, बाटू केव्स, जेंटिंग हाइलैंड्स, बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स, फिर पटाया

0: कोरल आइलैंड का मजा. फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन. फ्लाइट्स, फोर स्टार होटल्स, इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस सब इंक्लूडेड. विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846.
1: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह. बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे. तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी. साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें. ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th. आज ही तशरीफ लाइए. 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG. तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए.
2: जो कल जुने हुआ था वो बिग बॉस में दोबारा होगा.
3: Big Boss 20, starting from Sunday the 6th of September, only on Colors TV. Sky Channel 706, Virgin Media 826, EE 396.
4: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
5: Four beers, please, garçon!
4: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org. Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
6: This is Leica Radio, Greater Manchester. Next, for Sela with Saturday Vibe on Leica Radio, Greater Manchester. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: Your £1 in British sterling can get you up to a whopping 128.75 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or using the SBI Yono mobile app. T's and C's apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Like our radio.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
4: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह. बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी. साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें. ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई दी 11th. आज ही तशरीफ लाइए. 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए.
5: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place. 11,
6: 11. Call the Danube Properties London office today on 02 03 963 5757.

0: truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
2: 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0161 250 822 or sales at leicamedia.co.uk. 90s throwback plays now.
3: Leica Radio.

0: CBN, Surrenderella is guaranteed Desi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click riffgotheatre.com and be sure to book your tickets before the clock strikes midnight. Get ready as Surrenderella goes back into the Bollywoods. Radio partner, Laika Radio.
1: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह. बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे. तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी. साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें. ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th. आज ही तशरीफ लाइए. 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG. तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए.
2: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
3: Book now on DiwaliStory.com. Exclusive TV partner, Star Plus, and exclusive radio partner, Laika Radio Network.
4: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Laika Radio Greater London. Listen to Laika Radio Greater Manchester on LaikaRadio.com and Laika Radio.

0: है
1: लाइका रेडियो,
0: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
2: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
3: साउथहॉल ट्रेवल Auto protected.
4: कडल से लेकर हॉस्पिटल तक, स्कूल रन से लेकर एम्बुलेंस की सायरन तक, बेबीज, छोटे बच्चे और टीन्स में मीजल्स, मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया जैसी बीमारियां बहुत सीरियस हो सकती हैं और जान को खतरा हो सकता है। अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाना उन्हें सेहतमंद और महफूज रखने का सेफ तरीका है। बच्चों के लिए NHS वैक्सीन अवेलेबल हैं। NHS GM चाइल्ड वैक्स सर्च करें या अपने GP प्रैक्टिस से राब्ता करें।
5: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
7: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free, butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
8: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0161-250-8222 or sales@leicamedia.co.uk.

0: लता जी की खूबसूरत आवाज में एक दूजे के लिए फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। और मैं अपनी अगर यादों की बात करूं तो जब मैं पहली बार गोवा गया ना, जिस फिल्म के बारे में मुझे पता था, देख चुका था, तो मैं वो जगह ढूंढ रहा था कि जहां से उड़ी मारी थी कमल साहब रती अग्निहोत्री जी ने, उस जगह का नाम है वास्को द गामा। और मैं उस पॉइंट तक गया, मैं आप यकीन मानिए कि वहां पर जो टूरिस्ट आते थे उन्हें वहां के गाइड इस जगह पर लेकर दिखाते थे कि यहाँ पर फिल्म की शूटिंग हुई थी और यहीं से उन लोगों ने छलांग लगाई थी। आप यकीन मानिए, भले ही ये फिक्शन पिक्चर का मामला हो, लेकिन लोग यकीन करते हैं और वहां पर जाकर इस चीज को उस स्पॉट को देखने की कोशिश करते हैं। और काफी हद तक उस जगह पर टूरिज्म के में इस फिल्म का बड़ा हाथ है। सरिता जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी आगे। फिलहाल आपको अगला गीत हम लता जी की आवाज में सुना रहे हैं, फिल्म का नाम आई मिलन की बेला। सुनते रहे
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आपको इंडिया में पैसे भेजने हैं तो आज एक पाउंड के बदले मिल रहे हैं आपको 128 रुपीस एंड 75 पैसे। अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with the biggest classics on Leica Radio.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
1: One performer.
3: टीवी के सामने तो पोसम से कहने क्या पहनी है तुमने साड़ी भैया खिलाड़ियों के खिलाड़े।
4: Countless personalities.
5: जिंदगी बर्बाद हो गई है।
1: A whole universe of entertainment.
6: Canada function रखा हुआ है।
7: Sunil Grover live UK tour 2026.
1: 29th October OVO Arena Wembley London. 31st October Mattioli Arena Leicester.
7: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises, experience Sunil Grover live on stage in the UK.
1: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
7: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
8: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
9: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
10: We're not having that, are we?
9: No. Oi, Gila, eat water and cannons.
11: And fix those drips and drops.
12: And take shorter showers, yeah?
13: Because when we work together,
14: it all adds up.
15: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
16: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton with grills fired up and ready to serve you flame grilled Piri Piri favorites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
17: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
18: Four beers, please, garçon!
17: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
1: We are Leica Radio.
19: Leica Radio.
1: Listen to us in Greater Manchester and Greater London. Don't forget, in London, we're available on 1458 AM and DAB. This is Leica Radio, Greater Manchester. Send us your feedback on our programmes and presenters by simply emailing info@leicaradio.com. That's info@leicaradio.com. We would love to hear from you to make Leica Radio, Greater Manchester a better station for you. Leica Radio. Radio Greater Manchester is the new name for Asian Sound Radio, giving the northwest of England a refreshing Asian sound. Don't forget, info@leicaradio.com.
14: You're both on the same road. Same tarmac, same rules. Just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way. They're on their way, just like you. So use your mirrors. Check before you maneuver. And be aware of motorbikes. Because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety. It's on all of us. National Highways.
19: Advertise here now. Call 0161 250 8222 or email sales@lycaradio.com. She's back.
20: साथ देने का दिलाया था भरोसा तूने और फिर छोड़ दिया मुझको अकेला तूने. इन तमाम सवालात के जवाबात के साथ अनीसा नासिर विल बी वेरी मच हासिर.
19: Catch Anisa Nasir as she returns on the big show from Bank Holiday Monday at 7 PM on Leica Gold and Leica Radio, Greater Manchester.
21: This is Leica Radio,
19: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
21: This is Leica Radio,
19: Greater Manchester.
21: Leica Radio.

0: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
2: लता जी की खूबसूरत वॉइस आई मिलन की बेला फिल्म का एक गीत सुना. अब आपको सीधे ले चलते हैं एक मुख्तलिफ एक अलग तरह की आवाज जो बीच बीच में सुनते हैं ना, और ऐसा लगता है कि आप को खाने के साथ स्वीट डिश परोस दी गई हो. और ये आवाज है यशुदास साहब की. फिल्म का नाम है सावन को आने दो.
3: ये है
1: लाइका रेडियो
4: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: गुड आफ्टरनून सरिता आपकी सेवा में हाजिर है आज के प्रोग्राम के साथ एंड ह्यूज थैंक्स टू अनुराग हु आर सिटिंग इन फॉर मी. जानते हैं कि आजकल ट्रेन्स का क्या चल रहा है. ट्रेन्स इतना तंग कर रही हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ. जैसे ही मैं गाड़ी पार्क करके नॉर्थ पार्क स्टेशन पहुंची तो स्टेशन ही बंद था और सरिता ने पहले चेक ही नहीं किया कि स्टेशन चल रहा है, खुला है या नहीं चल रही है ट्रेन्स, मेट्रोपॉलिटन या जुबली लाइन. Then I drove to Ealing Broadway और वहां से Elizabeth Line लेकर and then DLR लेके यहाँ पहुंच चुकी हूँ. अब मैं स्टूडियो में हूँ, वेरी मच हाजिर आपकी सेवा में एंड थैंक्स करूंगी अनुराग का वंस अगेन जिन्होंने इस एक्सटेंडेड हाफ एन आवर काम किया मेरे बदले में. एंड दूसरी तरफ है एनिका यानी कि लाइका रेडियो पर. जहां भी बैठे आप सुन रहे हैं आपका स्वागत, आपका खैर मकदम करती हूँ. होप यू आर गुड, हमेशा खुश और खैरियत से रहें, ये दुआ ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूंगी. इफ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून. इफ यू आर फीलिंग बिट डाउन तो कम ऑन, चीयर अप. लाइफ इज टू लिव, लाइफ इज टू एंजॉय. जी और शान से मुस्कुराते गुनगुनाते चहकते महकते और थिरकते हुए गाने तो अब चुन चुन के लगाएगी सरिता आप ही के लिए. सो इससे पहले कि अगले गीत की तरफ बढ़े, एक जानकारी है मेरे सामने. द दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो ब्रॉट टू यू बाय NKN Media is back 5th and 6th of September को at London Hilton Park Lane featuring celebrity guests like Arbaaz Khan, Jacqueline Fernandez and Chitragandha Singh and Nargis Fakhri. Wow, सारे celebrities यहीं पहुंच जाएंगे 5th and 6th को Hilton में. So free entry है, register at NKN Properties Expo. It's one word, nknpropertyexpo.com. यहाँ विजिट कीजिएगा और अपना नाम रजिस्टर करा लें. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर कौन है? लाइका रेडियो.
2: Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: What a beautiful song, beautiful song. आपने सुना रफी साहब एंड लता जी की आवाजों में, जिसे कंपोज किया था एसटी बर्मन साहब ने एंड ही वन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर दिस फिल्म एंड इस फिल्म के गाने लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी साहब ने. फिल्म में काम किया था अमिताभ बच्चन ने, जया बच्चन थी, बिंदु थी एंड असरानी. सभी का काम जबरदस्त था एंड ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म को बनाया था. हैव यू सीन द फिल्म? अगर नहीं देखिए, जब कभी भी मौका मिले तो ये फिल्म जरूर देखिएगा. बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था जया बच्चन जी को, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का मैंने बताया एसटी बर्मन साहब को, सपोर्टिंग एक्टर में असरानी एंड बिंदु जी को भी नॉमिनेट किया गया था. अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. मेरे वो साथी जो बराबर मुझे वेलकम कर रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं, थैंक यू एवर सो मच. आई नो मैंने हाफ एन आवर मिस कर दिया और आपने भी, तो कोई बात नहीं, अब मैं 7 बजे तक आप ही के साथ हूँ.
1: Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. Leica Radio.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410. साउथ हॉल ट्रेवल. Protected.
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
4: Looking to get back into study? Choose Global Banking School. We deliver undergraduate and postgraduate courses in accounting, business, construction, computing, project management, healthcare, tourism, and psychology with counseling. Our flexible courses are taught face-to-face at a time to suit you on weekdays and evenings. Courses are delivered across 10 campuses in London, Birmingham, Manchester, and Leeds. Contact Global Banking School on 02080929440 or visit globalbanking.ac.uk to start your learning journey today.

0: लता जी की आवाज में गाया हुआ मुमताज पर पिक्चराइज गाना आपने सुना फ्रॉम द फिल्म दो रास्ते। राज खोसला साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और आनंद बख्शी साहब ने लिखा था इस गीत को। सुपर डुपर हिट फिल्म थी अपने जमाने की, जिसमें बलराज सानी भी थे, प्रेम चोपड़ा थे एंड बिंदु ने भी, शशिकला ने भी काम किया था, बिंदु भी थी शायद, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, पर आई थिंक बिंदु भी थी एंड राजेश खन्ना को कैसे भूल सकते हैं, उनकी अदाएं खूबसूरत, बहुत अच्छी फिल्म थी, नहीं देखी जरूर देखिए।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 129.1, Pakistani rupees 375.2, Sri Lankan rupee 443.83, Bangladeshi taka 166.79, Afghanis 88.29, US dollars 1.36.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKER. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on LIKER Radio. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LIKER Radio.
0: 105.92 per gram.
1: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
0: और वे प्रोग्राम के पहले तीन गीत आपने कौन से सुने मैं नहीं जानती, लेकिन इन तीनों गीतों में जो लास्ट तीन गीत मैंने चुने उनमें बिंदिया वर्ड आया। मुझे उम्मीद है कि तीसरा गीत भी आप जरूर पसंद करेंगे जो न्यूज तक लेके जाएगा।
1: दिस इज लाइकर,
2: ये है
1: लाइकर रेडियो।
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह, बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी, साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा ले। ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th, आज ही तशरीफ लाइए, 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
5: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
6: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day.
7: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
6: Southall Travel.
7: Call 0208-574-8410. 0208-574-8410.
6: Southall Travel can take you there.
8: Southall Travel at your

0: चलिए भी सबको आने देते हैं। आइए आइए आइए, आपका स्वागत है। लाइगा रेडियो नेटवर्क के जरिए ये आवाज आपके घर में गूंज रही है या आपकी कार्स में है, जहां काम कर रहे हैं वहां पर आप सुन रहे हैं, जहां भी बैठे सुन रहे हैं, आपका स्वागत है। आपका खैर मकदम करती हूँ। और अभी अभी मुझे पता चला है कि भाई इंडिया में भी प्रोग्राम सुना जा रहा है और हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। डिफेंस में काम करते हैं, आर्मी में है, हरप्रीत सिंह भाटिया जी, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेज। आपकी वाइफ है यहाँ लंदन में अमनदीप, उनकी तरफ से ये दोनों गीत मैंने आपके नाम किए, उम्मीद करती हूँ आपने पसंद भी किए होंगे। वैसे सारा ये प्रोग्राम आपके नाम कर देती हूँ। और अब ये बता दूं कि ये दो गीत चुनने का क्या मेरा मकसद था। आज नागार्जुन एक्किनेनी नागार्जुन अपना बर्थडे मना रहे हैं, जो आज ही के दिन 29 अगस्त 1959 में बॉर्न हुए थे। इंडियन एक्टर हैं, बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन तेलुगु सिनेमा एज वेल एज इन फ्यू हिंदी एंड तमिल फिल्म्स एज वेल, एंड ही हैज अपियर्ड इन ओवर 90 फिल्म्स एंड इज रिसिपियंट ऑफ टू नेशनल फिल्म अवार्ड्स इन 1989। नागार्जुन स्टार्ड इन मणिरत्नम्स रोमांटिक blockbuster Geethanjali, which won the National Film Award for the Best Popular Film providing wholesome entertainment. In the same year, he appeared in a higher hit Siva, an action film directed by Ram Gopal Verma. His notable ventures in other languages, including Hindi films, mein hai Shiva in 1990, then Khuda Gawah mein inhone kaam kiya tha in 1992, Zakhm mein in 1998, Brahmastra mein, Brahmastra aapne dekhi hogi 2022 mein, to Shiva ka role jo tha Nagarjun ne kiya tha, and iske ilawa inhone Angare mein, film Angare mein Akshay Kumar ke साथ भी काम किया था। सो एक गीत मैंने चुना था अंगारे से और एक गीत चुना मैंने फिल्म जख्म से। अब आप जानते हैं कि इनसे पुराने फिल्मों में ये नहीं थे, इसलिए मैं और गाने नहीं सुना पाऊंगी इनकी फिल्मों के, लेकिन हमारी तरफ से इन्हें जन्मदिवस पर ढेर सारी मुबारक। अगर आप भी अपना बर्थडे मना रहे हैं तो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपकी जिंदगी में ऐसे दिन बार बार आए, हजार बार आए, आप खुशियां मनाते रहें, खुशियां बांटते रहें और खुशियों को बटोरते भी रहें। And if it's your wedding anniversary, congratulations to you, Sumita and Manisha. Many happy returns. Congratulations on your वेडिंग एनिवर्सरी। और अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इस आवर के बाकी गीतों में एक हीरोइन है जो आज अपना बर्थडे मना रही है, लीना चंद्रवारकर। उनका बर्थ हुआ था 29 अगस्त 1950 में, एंड आज अपना 76 बर्थडे मना रही है। हमारी तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई। और बाकी कुछ गीत उन्हीं की फिल्मों के मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगी इन दिस आवर।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट भी, अगर आप SBI के जरिए पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी, तो आज आपको बड़ा अच्छा रेट मिल रहा है, 128 रुपीज एंड 75 पैसा। इट डिपेंड्स कि कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करा रहे हैं। और ट्रांसफर कराना बहुत आसान काम है, यू कैन गो इन द ब्रांच एंड ट्रांसफर द मनी। ऑनलाइन कर सकते हैं, SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बता दो, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Sarita Sabharwal on Leica Radio. Leica Radio.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
3: जिंदगी बर्बाद। Get
1: ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
4: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
1: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
5: Banana function rakha hua hai.
6: Make your bank holiday taste like summer with Cake Box. Cool down with our new limited edition ice cream sundaes in mango, chocolate, strawberry and vanilla. And this bank holiday weekend, they're 3 for 2. Saturday to Monday only, in-store and online at cakebox.com. Your bank holiday just got a whole lot cooler.
7: Badhiya service se mala mal travel
8: aur bachat karane mein bemisal travel.
9: You mean Subtle Travel?
8: Yes, desh videsh mein dur dur tak mashhoor.
9: Ek baar aaj माई जरूर Southall Travel.
8: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
9: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
10: Call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0161 250 1250. That's 0161 250 1250.
11: We're finally going home for the wedding.
12: I know, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
11: Flights booked, outfits packed, but what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos and keeping everyone updated.
12: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
11: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
12: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
11: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
13: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
14: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
13: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
15: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
4: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758-580-182. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
1: We'd love to know what you think of your new Leica Radio Greater Manchester. Email us today with your feedback. info@leicaradio.com. That's info@leicaradio.com. This is Leica Radio Greater Manchester.
16: Leica Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno leicagold.com pe.
17: This is Leica Radio
1: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
17: This is Leica Radio
1: Greater Manchester.
17: Leica Radio.

0: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
2: 1971 की फिल्म से मैंने चुना था इस गीत को, जाने अनजाने, और इस फिल्म में उनके साथ थे शमी कपूर, शक्ति सावंत साहब ने बनाई थी ये फिल्म, विनोद खन्ना भी थे इस फिल्म का हिस्सा, और बहुत प्यारा सा गीत आपने सुना लता जी एंड रफी साहब की आवाज़ों में। जिन्हें भी ये गाना पसंद आए वो अपने नाम ही समझेगा। और देशराज जी ने खास तौर पर गीत की फरमाइश की है, थैंक यू एवर सो मच फॉर राइटिंग इन, पर आपने कहा कि वो गाना जरूर प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए, तो यस आ रहा है आपके लिए और मेरे सभी साथियों के नाम जिन्हें ये गाना बहुत पसंद है, जिन्हें लीना चंद्रवरकर बहुत पसंद है। लीना चंद्रवरकर के बारे में क्या बताऊं, आज के इस खूबसूरत दिन में हम याद कर रहे हैं एक हिंदी सिनेमा की ऐसी अदाकारा को जिनकी खूबसूरती में सादगी थी, मुस्कान में मासूमियत थी और अदाओं में एक अलग सी नजाकत थी। वो दौर जब हिंदी सिनेमा में खूबसूरती का मतलब सिर्फ ग्लैमर नहीं था बल्कि सादगी, मासूमियत और एक प्यारी सी मुस्कान थी जैसी लीना जी के चेहरे पर। एक ऐसी ही खूबसूरत अदाकारा रही हैं लीना चंद्रवरकर, जो आज अपना बर्थडे मना रही हैं। और इनके साथ साथ अगर आज आपका भी बर्थडे है तो बहुत बहुत बधाई हो। लीना चंद्रवरकर ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने अभिनय और अपनी खूबसूरत स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई। उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ था मन का मीत फिल्म से और इसके बाद उन्होंने कई लोकप्रिय हिंदी फिल्मों में काम किया और 60 और 70 के दशक में सिनेमा में एक ये जाना पहचाना चेहरा बन गई। और भी बातें होंगी लेकिन आइए पहले ये गीत सुनें।
0: सरिता सबरवाल विद द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन लाइका रेडियो।

0: भाई मिट्टू मियां को तो बता रहे हैं, हम भी सबको बता देंगे 29 अगस्त 1950 कैसे भूल सकती हैं। लीना जी आपका बर्थडे है और मैं यहाँ ये बताना चाहूंगी, लीना जी से मेरी बहुत दफा मुलाकात हुई और उन्हें इंटरव्यू भी किया है। एंड आई गॉट अ फोटोग्राफ वेयर अमित कुमार साथ में बैठे हैं, लेकिन सुमित जो उनके छोटे बेटे हैं इनकी लैप पर बैठे हैं। सो वो फोटो मैं पोस्ट करना चाहती थी आज, लेकिन समहाउ आई गॉट सो बिजी, वो फोटो मैंने पोस्ट नहीं की अपने सोशल मीडिया पर देखती हूँ घर जाकर मैं वो फोटो जरूर पोस्ट करने की कोशिश करूंगी। सुनते रहिए, साथ देते रहिए।
1: Sarita Sabharwal with the biggest classics on Leica Radio.
0: और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वॉच द स्टेज स्पेक्टिकल स्पेक्टिकल दिवाली स्टोरी एट ओ अरीना वेम्बले ऑन संडे 27 सितंबर। टिकट्स फ्रॉम diwalistory.com। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर हैं लाइका रेडियो नेटवर्क। और इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूंगी कि अबराग हसन जो हैं लाइका रेडियो नेटवर्क की पार्टनरशिप में है विद प्रीमियम हॉस्पिटल ब्रांड। एंड रागासन डिटेल्स आप लेना चाहते हैं तो laikaradio.com पर जाकर ले सकते हैं।
1: Sarita Sabharwal with the biggest classics on Leica Radio.
0: लीना चंद्रवरकर जी का बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मिलकर। सो जैसे मैंने बताया, उनका फिल्मी सफर मन का मीत से शुरू हुआ था। लीना जी की खासियत थी उनकी सहज अदाकारी, पर्दे पर आते ही उनकी मुस्कान और उनकी सादगी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। चाहे रोमांटिक किरदार हो, भावुक दृश्य हो या किसी खूबसूरत गीत का फिल्मांकन, लीना चंद्रवरकर हर अंदाज में बेहद खूबसूरत नजर आती थी।

0: धर्मेंद्र और लीना चंदावरकर ने इस फिल्म में काम किया था और साथ में थे विनोद खन्ना भी। और ये तमिल फिल्म पर बेस्ड थी फिल्म, 1967 में आई थी वो तमिल फिल्म। और ये फिल्म रखवाला रिलीज हुई थी 1971। इसी दौरान मुझे मैसेज लिखकर भेजा है रंजना चावड़ा जी ने और कह रही हैं कि कल सभी ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। यस, सभी को, सभी बहनों को, भाइयों को बहुत बहुत बधाई हो रक्षाबंधन की। कह रही हैं कि आज छुट्टी है तो हम सब जा रहे हैं अपने भाई के घर और सभी फैमिली इकट्ठे होंगे, कल जाएंगे 30 अगस्त को। एंड ये कहा है कि कल मैसेज पढ़ देना, तो कल दोबारा से प्लीज भेजिएगा। सरिता बहुत भुलक्कड़ है, लेकिन सभी को बहुत बहुत बधाई हो रक्षाबंधन की।
1: Like an extra podcast update.
0: राइट, बता दें कि इस परी के पॉडकास्ट में है द दिवाली स्टोरी शोकेस और होस्ट है राजबदन एंड खुश एंड द टीम ऑफ दिस इनक्रेडिबल शो टेक अस बिहाइंड द दिवाली स्टोरी एक्सप्लोरिंग व्हाई द रामायण स्टिल मैटर्स टुडे। सो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जरूर ये एपिसोड देखिएगा। लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट इज अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एमेजन, एप्पल एंड the major streaming platforms.
1: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Is Leica Radio.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
3: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
4: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then. We're not having that, are we?
5: No. Oi, you there? Is water and cannons?
6: And fix those drips and drops.
7: And take shorter showers, yeah?
8: Because when we work together, it all adds up.
9: So come on, you lot, let's save water.
10: Manchester, get ready as Surinderella is back for 2026. Rifco Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Palace Theatre Manchester, Friday the 4th and Saturday the 5th of September. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surinderella is guaranteed Desi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rifcotheatre.com and be sure to book your tickets before the clock strikes midnight. Get ready as Surinderella goes back into the Bollywoods. Radio partner Leica Radio.
11: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
12: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
13: Dubai is the place. 11,
12: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
14: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
15: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
16: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
15: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
16: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
15: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
16: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
17: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton, with grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton, Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
18: का अर्जुन में हुआ था वो बिग बॉस में दोबारा होगा तथास्तु।
19: बिग बॉस 20 स्टार्टिंग फ्रॉम संडे द 6th ऑफ सितंबर ओनली ऑन कलर्स टीवी स्काई चैनल 706 वर्जिन मीडिया 826 EE 396
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
20: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken, with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app, where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount, plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
1: A new Asian sound for the northwest of England.
21: Like a radio.
1: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. The Leica Radio Network. The perfect soundtrack for a British summer heatwave.

0: रहना दूर सहेली, मत छू लेना देख।
1: किशोर दयान लता जी की आवाजों में आपने फिल्म विदाई से ये गीत सुना और लीना चंद्रवर्कर जी की फिल्मों के कुछ गीत आप सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 129.7 and Pakistani rupees 375.35, Sri Lankan rupee 443.93, Bangladeshi taka 166.81, Afghanis 87.98, US dollars 1.35.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on LIKA Radio. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LIKA Radio.
1: It's £105.92 per gram.
2: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
3: LIKA Radio.
4: Hi, I'm Rubina Khan. सुनिए मुझे लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर में दोपहर 1 से 4 बजे तक द मैगजीन शो में।
5: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
6: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
7: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
6: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
7: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
6: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
7: Exclusive radio partner LIKA Radio Network.
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल

0: आपका साथ है तो बहुत अच्छा लगता है। आपके मैसेजेस, इतने प्यार से लिखे हुए मैसेजेस मुझे बराबर मिल रहे हैं, जिसके लिए तह दिल से आप सभी की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह से मैसेजेस लिखते रहिएगा। एंड प्रोग्राम का लास्ट और फाइनल आवर है, इट्स नियरली 6:14 इन द इवनिंग। क्या प्लान किए हैं? आज सैटरडे इवनिंग है, अभी कहाँ जा रहे हैं? वेल, कल रक्षाबंधन थी तो बहुत से लोग वीकेंड का इंतजार करते हैं, तो क्या आज आप भी आज मना रहे हैं और आज राखी बांधेंगे? तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। क्या पार्टी चल रही है? किसी का बर्थडे है, शादी की सालगिरह है, तो खूब इंजॉय कीजिएगा, लेकिन हमें अपने साथ रखिए, क्योंकि मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास है क्या? लाइका रेडियो, लाइका रेडियो नेटवर्क के जरिए क्या क्या आप सुन पाते हैं, 24 घंटे हम आपका साथ देते हैं। बहुत से यहाँ पर अब तो लाइका गजल भी आ रहा है, इसके अलावा 90s सुनते हैं आप, पंजाबी सुनते हैं आप, लाइका गोल्ड 2 सुन पाते हैं। और हमारी गोल्ड नाइट्स के बारे में क्या कहूँ, ओवरनाइट जो सर्विस है वो भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे अच्छे गीत आपको सुनने को मिलते हैं। एंड मेरे बाद जो विंटेज गोल्ड लेकर आते हैं सैंडी शाह, उनके गीत तो बहुत जबरदस्त होते हैं, इतनी पुरानी यादें जुड़ी होती हैं इन गीतों के साथ साथ, तो आपको जरूर अच्छे लगते होंगे। अब लौटते हैं इन दो गीतों की तरफ। पहला गीत मैंने चुना था पृथ्वी फिल्म से, 1997 की फिल्म, जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी, 29th of August 1997 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। सुनील शेट्टी थे इस फिल्म के हीरो और शिल्पा शिरोडकर थी हीरोइन। नितिन मनमोहन ने ये फिल्म बनाई थी, वीजू शाह का था संगीत। बहुत पॉपुलर हुआ था ये गीत जो मैंने प्रोग्राम में शामिल किया। एंड दूसरा गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म प्यासा सावन, 1981 की फिल्म है। अब 1980s की कोई भी फिल्म आज ही के दिन नहीं रिलीज हुई जिसके बारे में मुझे मालूम होता। दूसरी जो फिल्म रिलीज हुई थी 29th of August को, वो 1997 की ही फिल्म है, एक फूल तीन कांटे। लेकिन मैंने 1980s का गीत चुना था, तो मैंने प्यासा सावन को चुना, जो कल रिलीज हुई थी 86 में एक्चुअली हुई थी। एक चादर मैली सी, देन जीना मरना तेरे संग इन 1992, 28th की बात कर रही हूँ कल की। सो कल की रिलीज फिल्म प्यासा सावन से मैंने ये गीत चुना था, जिसमें काम किया था जितेंद्र एंड रीना रॉय ने, एंड इस फिल्म का संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। संतोष आनंद जी ने इस फिल्म के गीत लिखे थे। उम्मीद करती हूँ दोनों गीत आपको पसंद आए। और अब दो गीतों की चॉइस दे दूँ आपको। वेल, चित्रगुप्त जी हैं आज हमारे जो आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं। चित्रगुप्त जी की दो फिल्मों के गीत मुझे बहुत पसंद है, और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कौन सा गीत मैं आप तक पहुँचाऊँ। ये पर्वतों के दायरे फिल्म वासना का गीत जो 1968 में आई थी, या फिर छेड़ो ना मेरी जुल्फें गंगा की लहरें फिल्म का गीत, कौन सा गीत आपके दिल के करीब है मुझे जल्दी से नंबर मिलाकर बता दीजिएगा। छेड़ो ना मेरी जुल्फें बी, एंड ए इज ये पर्वतों के दायरे। यू गॉट ओनली लिमिटेड टाइम, 3 मिनट है, जल्दी से बता दीजिएगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भाई SBI UK के जरिए अगर आप पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो बहुत आसान काम है। You can go in the branch, online कर सकते हैं, और SBI Yono mobile app अगर आपने डाउनलोड किया है तो उसके जरिए कीजिएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस हमेशा अप्लाई करती हैं, इसलिए कि कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करा रहे हैं। आज आपको एक पाउंड के बदले मैक्सिमम मिल सकते हैं 128 rupees and 75 paisas.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Sarita Sabharwal on Leica Radio. Leica Radio.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
1: One performer.
3: Countless personalities.
1: A whole universe of entertainment.
3: Sunil Grover, live UK Tour 2026.
1: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
3: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
1: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
4: Manchester, get ready as Surinderella is back for 2026. With

0: This is Laika.
1: This is Laika Radio.
0: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Laika Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
1: This is Laika Radio.
0: Greater Manchester.
1: Laika Radio.
2: भाई मेरे बहुत से साथियों ने दोनों गीतों की फरमाइश की थी तो मैंने सोचा चलिए दोनों ही गीत आप तक पहुंचा देते हैं। ये भी गीत बहुत खूबसूरत है, मुझे भी बहुत पसंद है। लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

0: अमिता जी थैंक यू सो मच, एंड मीना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रंजना कुकाडिया, उल्लास जी, संध्या जी, नौशाद हीरो, भारती जी, गैरी बरार, आप सबकी फरमाइशें पूरी हुई, अर्जुन जी थैंक यू, इसी तरह से मेरा साथ देते रहिएगा।
1: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
2: This is Laika Radio. Yeah.
1: Laika Radio.
3: Laika Radio.
4: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
0: रफी साहब की आवाज, फिल्म का नाम प्रिंस, एफ सी मेहरा साहब की आज बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें हम याद कर रहे हैं। He was born on 29th of August 1923.

0: फिल्म का नाम था प्रिंस और शमी कपूर थे इस फिल्म के हीरो। ये फिल्म किसने बनाई थी? एफ सी मेहरा साहब ने। ही डायरेक्टेड ही प्रोड्यूस दिस फिल्म एंड इट वाज डायरेक्टेड बाय लेक टंडन जी। बहुत प्यारे गीत थे इस फिल्म के, उन्हीं में से चुना था मैंने इस गीत को। एफ सी मेहरा साहब को हम याद कर रहे हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। और मैं आपको फिर से चॉइस दे दूं दो गीतों की, राइट? जो गीत आपके दिल के ज्यादा करीब है उसके बारे में मुझे जल्दी से बता दीजिए। इन्होंने फिल्म बनाई थी शिकारी 1963, उसके दो गीतों में मैं तय नहीं कर पा रही हूं कि कौन सा गीत आपको ज्यादा पसंद आएगा। अगर मैं पूछूं जवाब दोगे या फिर चमन के फूल, कौन सा गीत आपको ज्यादा अच्छा लगता है? जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। और साउथ ऑल ट्रैवल वाले आपको ये बताना चाह रहे हैं कि उनके पास कंपेटिटिव हॉलीडे डील्स हैं टू गो टू दुबई। कॉन्टेक्ट साउथ ऑल ट्रैवल टूडे ऑन 0208-574-8410। साउथ ऑल ट्रैवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for Manchester at breakfast and drive. Leica Radio.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
3: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह। बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी। साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें। ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th। आज ही तशरीफ लाइए। 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
4: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
6: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
7: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
6: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
7: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
6: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
7: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। Limited offer. Terms and conditions apply.
8: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
9: Book now on DiwaliStory.com. Exclusive TV partner, Star Plus, and exclusive radio partner, Leica Radio Network.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Greater Manchester, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Leicester? Call 0161 250 8222. That's 0161 250 8222. Or email sales@leicamedia.co.uk. Advertise your brand on Leica Radio, Greater Manchester, and reach out to hundreds of thousands of listeners across the northwest of England. Call 0161 250 822. That's 0161 250 822. Did you know you can advertise on this station, Leica Radio, Greater Manchester, plus our other offerings, Leica Radio, Greater London, Leica Gold, Greater London, and Leica Radio, Leicester? As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0161 250 822. That's 0161 250 822. Or email sales@leicamedia.co.uk.
10: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid? Fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard! Help!
11: Okay, help's on its way.
12: Grab my hand!
13: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
14: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
1: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0161 250 822 or sales@leicamedia.co.uk.
15: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: फिल्म शिकारी से चुना था मैंने इस गीत को, बहुत प्यारा गीत था. एंड जो चॉइस मैंने दो गीतों की दी थी, मेरे बहुत से साथियों ने गीत सुनना चाहा था, तो उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा. वैसे कुछ थोड़े से वोट्स दूसरे गीत को भी मिले थे, पर मैंने ये वाला गीत चुन लिया और उम्मीद करती हूँ कि आपने पसंद भी किया. वैसे प्रोफेसर के भी दो गीत में से मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं चली या फिर ए गुलवतन, कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद है. सो फिल्म शिकारी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. फिल्म शिकारी मोहम्मद हुसैन साहब ने डायरेक्ट की थी और इसे FC मेहरा साहब ने प्रोड्यूस किया था. फिल्म में काम किया था अजीत ने, रागिनी थी एंड हेलन थी, लेकिन संगीत बड़ा ज़बरदस्त GS कोहली साहब ने दिया था इस फिल्म का संगीत. और गाने भी सारे अच्छे थे, बाजी घुंघरू भी वॉज ए गुड सॉन्ग एंड चमन के फूल आपने सुना, अगर मैं पूछूं जवाब दोगे वन ऑफ माय फेवरेट्स, एंड तुमको पिया दिल दिया कितने नाज से, दैट सॉन्ग इज आल्सो वंडरफुल ब्यूटीफुल. लता मंगेशकर एंड उषा जी ने गाया था उस गीत को. एंड ये रंगी महफिल आशा भोसले जी ने गाया था. चल उम्मीद करती हूँ कि ये मैंने जो गीत प्ले कर दिया, ज्यादा वोट सीसी को मिले थे और आप सबने इसे पसंद भी किया होगा.
0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Right, we ab bata de aapko ki क्या रेट चल रहा है करेंसी का. अगर आप अपने पैसे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं किसी भी कंट्री में, तो थोड़ी सी कंट्रीज़ के बारे में बता दूं कि एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले आपको मिल सकते हैं इंडियन रुपीज़ 129.17, पाकिस्तानी रुपीज़ 375.58, श्रीलंकन रुपीज़ 444.7, बांग्लादेशी टका 166.87, अफगानीज 88.4 एंड US डॉलर एक पाउंड के बदले आपको मिल रहे हैं आज 1.35.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on LIKA Radio. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: भी गोल्ड का रेट बढ़ता और घटता रहता है. आज आपको एक 10 ग्राम्स जो है वो मिलेगा, नो नो 1 ग्राम सोना इज फॉर 105 pounds and 92 pence.
0: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: मैं हूँ इब्ने ताबिश और मेरा आपका साथ रहता है रोजाना मिड मॉर्निंग शो में लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर से सुबह 10 बजे से 1 बजे दोपहर तक.
0: ये है लाइका रेडियो.
1: सो आज के प्रोग्राम में हमने FC मेहरा साहब को याद किया, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर, जिन्होंने शिकारी इन 1963, एलान इन 1971, प्रोफेसर इन 62, प्रिंस इन 1969 और इसके अलावा अली बाबा 40 चोर जैसी फिल्में बनाई, प्रोड्यूस की. एंड He passed away in 2008 and पर उनकी एक फिल्म थी जो उनके जाने के बाद ही रिलीज हुई थी. उम्मीद करती हूँ मेरे चुने गीत आपने पसंद किए. आपने बहुत सारे मैसेजेस मेरे साथ शेयर किए हैं, अपने होने का एहसास दिलाया है. दो आई केम इन लेट टुडे, पर कल ऐसा नहीं होगा, कल मैं टाइम पर आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगी. और अब मेरे बाद आ रहे हैं सैंडी शाह, जो कि विंटेज गोल्ड प्रोग्राम आपके लिए पेश किया करते हैं एवरी सैटरडे एंड संडे, और उसके बाद गोल्ड नाइट्स आप सुन पाते हैं, ओवरनाइट सर्विस है हमारी और उसमें भी बहुत खूबसूरत गीत होते हैं. लाइका रेडियो 90s सुना करें विदाउट एनी इंटरप्शन, बैक टू बैक म्यूजिक 90s का, लाइका रेडियो पंजाबी एंड लाइका गोल्ड 2 आप सुन पाते हैं। एंड ये भी बता दूं कि बहुत जल्द गजल का रेडियो आ रहा है, गजल चैनल आ रहा है, तो वो भी आप लाइका गजल सुन पाएंगे। जिस भी जरिए से आपने मेरा साथ दिया, चाहे 10:35 AM पर सुन रहे थे DAB, अलेक्सा, गूगल होम एंड लाइकागोल्ड.com के जरिए, उम्मीद करती हूँ मेरा साथ आपने पसंद किया और मेरे चुने गीत, मेरी बातचीत आपके मन को भागी। अब मेरे बात तो यहाँ आ रहे हैं सैंडी शाह, दूसरी तरफ लाइका रेडियो पर होंगी सोनिया एंड मैनचेस्टर रेडियो पर आपका साथ निभाएंगे अंकुर, तो उनका साथ दीजिएगा। मेरी तरफ से बाय-बाय, हैव ए लवली एंड सुपर्ब इवनिंग। अगर आप कहीं पार्टी कर रहे हैं, रक्षाबंधन मना रहे हैं, या वैसे ही किसका बर्थडे या शादी की सालगिरह मना रहे हैं, तो हमें हमेशा अपने साथ रखिएगा और हम आपका मनोरंजन अच्छी तरह से करते रहेंगे। चलिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, इसी तरह से मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, चहकते रहें, महकते रहें, और अब बाय फॉर नाउ।
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत। महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, सेंटोसा आइलैंड, बाटू केव्स, जेंटिंग हाइलैंड्स, बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स, फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा, फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन, फ्लाइट्स, 4-star होटल्स, इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस सब इंक्लूडेड। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956 154 846.
4: Celebrate 30 years of East is East as Ayub Khan Din's iconic story returns to its northern roots at the Octagon Theatre in Bolton.
5: Don't miss Bhaskar Patel leading a stellar cast in this hilarious and heartfelt comedy about the Khan family. Set in Salford back in 1971, follow husband George and his wife Ella and their 7 children as they navigate life between 2 cultures.
4: See East

से वहां जैसे ये आसमान। चाहे कोई मुझे जंग भी कहे, कहने दो जी कहता रहे,

0: रहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: Leica Radio. Leica.
1: Yes, you're listening to a special show with LJ Zabe this Saturday, 7 to 10pm, exclusively on Leica Radio Manchester, covering lovely, lovely encore. It is Atif Aslam weekend, and we'll be singing along, and I'll be posting some sing-alongs in the studio as well. Why don't you send me one of your videos sing-along? You can follow us on Instagram, Leica Radio, at Leica Radio MCI, and you can follow me at J Zabe. And we'll share करते हैं वीडियो. आप भी हमारे साथ थोड़ा सा गाना गाना गाएं, गाना शाना होता है और उसके साथ थोड़ा सा डांस वांस भी हो जाएगा. I'll be posting very shortly. आप भी पोस्ट करें. I was singing my heart out in the studio. इतना खूबसूरत सा गाना है पहली नजर में, कैसा जादू हो गया. और जादू का हमने गाना भी अभी प्ले किया था, पाकिस्तानी हिट दिया इन द लास्ट आवर. सज्जाद अली का खूबसूरत सा गाना था. इसी तरह हम दिस इज द वाइब वी गोना बी कीपिंग दिस इवनिंग अंटिल 10 PM. और वाइब की बात हो रही है, शायद वो बादशाह वाला गाना भी लगा लूं. इट्स अ वाइब, इट्स अ दैट वन. थैंक यू सो मच अयूबी भाई, आपने मुझे इमोजीज भेजी हैं. थैंक यू सो मच, इमोजीज भेजे और मैसेजेस भी भेजें. 07 03 40 30 20 इज द नंबर टू गेट इन टच विद मी. Wherever you are, whatever you're doing, thank you so much for your company, as always. No need to go anywhere. Keep it locked on Leica Radio Greater Manchester with your host, Jahar Zabe, a.k.a. J Zabe.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
3: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting. Celebrate 30 years of East is East as Ayub Khan Din's iconic story returns to its northern roots at the Octagon Theatre in Bolton.
4: Don't miss Bhaskar Patel leading a stellar cast in this hilarious and heartfelt comedy about the Khan family. Set in Salford back in 1971, follow husband George and his wife Ella and their 7 children as they navigate life between two cultures.
3: See East is East from Friday 4th September to Saturday 3rd of October. Book now at octagonbolton.co.uk.
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
6: कडल से लेकर हॉस्पिटल तक, स्कूल रन से लेकर एम्बुलेंस की सायरन तक, बेबीज, छोटे बच्चे और टीन्स में मीजल्स, मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया जैसी बीमारियां बहुत सीरियस हो सकती हैं और जान को खतरा हो सकता है. अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाना उन्हें सेहतमंद और महफूज रखने का सेफ तरीका है. बच्चों के लिए NHS वैक्सीन अवेलेबल है. NHS GM चाइल्ड वैक्स सर्च करें या अपने GP प्रैक्टिस से राब्ता करें.
7: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply doesn't work. For quick reply, affects your concentration, and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
0: Advertise your service here. 0161 250 8222. Leica Radio, Greater Manchester.

लोगों का वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
3: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
4: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
3: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
2: दिस इज लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर, होम ऑफ लंदन्स लाइका रेडियो एंड लाइका गोल्ड.

0: Laika Radio Punjabi, Laika Radio Mobile App te, laikaradio.com te Alexa. Play Laika Radio Punjabi.
1: Punjabi.
2: Download the Laika Radio Mobile App. Listen live and listen back to your favorite shows.
3: अपने कारोबार को अक्रॉस ग्रेटर मैनचेस्टर पहुंचाना चाहते हैं तो इसे लाइक रेडियो मैनचेस्टर पर जो साउथ एशियन कम्युनिटी के सीने में दिल बन के धड़कता है एडवर्टाइज करके सैकड़ों लिसनर्स तक रोजाना पहुंचाइए। लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर ईमेल sales@laikamedia.co.uk और कॉल नंबर इज 0161250822 दैट इज 0161250822 लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर आपकी कम्युनिटी आपका स्टेशन।

0: product advertised across the largest Asian radio network. We are Leica Radio. Email sales at leicamedia.co.uk.
1: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह. बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी. साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें. ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th. आज ही तशरीफ लाइए. 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए.
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
3: Dubai is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
4: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
5: Dubai is the place. 11, 11.
4: Call the Danube Properties London office today on 02 03 963 5757 and book your meeting. Danube

0: ये है लाइका रेडियो। आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
1: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
2: यू मीन सॉफ्टल ट्रेवल?
1: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
2: एक बार आजमाइए जरूर सॉफ्टल ट्रेवल।
1: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
2: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
3: कॉल सॉफ्टल ट्रेवल 24 hours a day, 7 days a week ऑन 0161-250-1250। दैट्स 0161-250-1250।
4: मेक your bank holiday tastes like summer with Cake Box. Cool down with our new limited edition ice cream sundaes in mango, chocolate, strawberry and vanilla. And this bank holiday weekend, they're 3 for 2. Saturday to Monday only, in store and online at cakebox.com. Your bank holiday just got a whole lot cooler.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाए 0208-8839-0880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
6: Have you noticed the way fans shout at football matches?
7: Oh, wake up!
6: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
0: New hits on Leica Radio.

0: Breaker Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
1: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danew Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danew Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410 साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
3: सुबह का नाश्ता हो दोपहर का लंच या शाम का डिनर सब कुछ एक ही जगह बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी पाए निहारी मगज पराठे और बिरयानी साथ ही लजीज डिजर्ट्स फालूदा शेक्स कड़क चाय कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th आज ही तशरीफ लाइए 881 स्टॉकपोर्ट रोड मैनचेस्टर M19 3PG तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट हर वक्त हर जायके के लिए
4: जो कर्ण जन्म हुआ था वो बिग बॉस में दोबारा होगा
0: Big Boss 20, starting from Sunday the 6th of September, only on Colors TV. Sky Channel 706, Virgin Media 826, EE396. Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Power your business's growth by advertising here on Leica Radio, Greater Manchester, the largest Asian commercial radio station in the northwest of England. Call 0161 250 8222. That's 0161 250 8222. Or email sales@leicaradio.com.
5: Yeah, Leica Go.

क्या अब भी तुम्हारी फुरकत में एक सावन कोई लिखता है? क्या अब भी तुम्हारे होठों पर एक चुंबन कोई धरता है? क्या अब भी तुम्हारे शानों से मलमल का दुपट्टा गिरता है? क्या अब भी तुम्हारी बाहों में एक दिल सा कोई रहता है?

तुमको सोच रहा हूँ, बस मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस तुम मुझ में डूबती जाती हो, मैं तुम में डूबता जाता हूँ। तुम मेरे शाने से लगकर कुछ कान में कहने वाली हो, तुम मेरे ध्यान की दुनिया की एक सुंदर सी शहजादी हो।

0: ये है लाइका रेडियो।
1: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी, सो नाउ बी अ पार्ट ऑफ इट। क्रिएट वेल्थ विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ। द न्यू प्रॉपर्टीज दुबई हैज समथिंग फॉर एवरीवन विद इट्स एम्बिशियस 11-11 इनिशिएटिव एमिंग टू कंप्लीट 11 लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स इन जस्ट 11 मंथ्स, फीचरिंग व्यूज, ओएसिस, ओशंस, एलीट्स, फैशंस एंड स्पोर्ट्स। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर यू, सो व्हाई वेट? बी पार्ट ऑफ दुबईस ग्रोथ स्टोरी। कॉल द न्यू प्रॉपर्टीज दुबई लंदन ऑफिस टुडे ऑन 02039635757 to arrange your meeting.
2: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल
3: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
4: यू मीन सॉफ्टॉल ट्रेवल?
3: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
4: एक बार आजमाइए जरूर सॉफ्टॉल ट्रेवल।
2: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
4: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
5: कॉल सॉफ्टॉल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161-250-1250. दैट्स 0161-250-1250.
6: This is Leica Radio, Greater Manchester. Send us your feedback on our programs and presenters by simply emailing info@leicaradio.com. That's info@leicaradio.com. We would love to hear from you to make Leica Radio, Greater Manchester a better station for you. Leica Radio, Greater Manchester is the new name for Asian Sound Radio, giving the northwest of England a refreshing Asian sound. Don't forget, info@leicaradio.com.
7: You're both on the same road, same tarmac, same rules, just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way, they're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you maneuver, and be aware of motorbikes, because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
6: This is Leica Radio, Greater Manchester.